0: नेशनल न्यूज़ एजेंसी ने बताया है कि इसराइली जंगी तैयारों ने नबती अलफौका और इलाके और करीबी कस्बे कफर तबनीद के मशरकी मज़ाफात को निशाना बनाते हुए छापे मारे। NNA ने रिपोर्ट किया है कि इसराइलों ने जोहरानी इलाके के कस्बे इंसारिया पर भी ड्रोन हमला किया। माहदे के बाद से अब तक जुनूब पर इसराइली हमलों में कम अज़ कम 5 अफराद हलाक हो चुके हैं। तशद्दुद में कमी ने जुनूबी लुबनान के कुछ रिहायशियों को अपने कस्बों और देहातों का मुआयना करने और वापस आने की इजाज़त दी है, लेकिन लुबनानी फ़ौज ने मकामी लोगों पर जोर दिया है कि वह इसराइली खिलाफ वर्जियों और हमलों के खतरे का हवाला देते हुए अपनी वापसी में ताखीर करें। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराकची ने गुज़िश्ता रोज़ कहा कि इस जंग में काबिज़ किए गए इलाकों से इसराइली अफवाज के इनखला के बगैर तनाज़े का खात्मा नामुकम्मल होगा। उन्होंने कहा कि सेहूनी हुकूमत की जानब से अब से लुबनान पर कोई भी फौजी हमला और लुबनानी इलाकों पर मुसलसल कब्ज़ा हमारे नज़दीक मुफाहमत की याददाश्त की खिलाफ वर्जी तसव्वुर किया जाएगा। दूसरी जानब इसराइली वज़ीर आज़म बेन्यामिन नेतन्याहू ने गुज़िश्ता रोज़ कहा कि उनके मुल्क की अफवाज जब तक ज़रूरत होगी लुबनान में रहेंगी। हिजबुल्लाह ने मंगल के रोज़ से अब तक जनूबी लुबनान में इसराइली अहदाफ पर हमलों का दावा करने वाला कोई बयान जारी नहीं किया है।
1: इसराइल मीडिया ने रिपोर्ट किया है अमरीका ईरान के एक माहदे के बावजूद जिसने मुतद महाजों पर जंग खत्म कर दी थी, इसराइली फौज ने बड़ा तवील मुद्दती मुदाखलत की तैयारी मुकम्मल कर ली है। इसराइल सरकारी टेलीविजन कान ने नाम जाहिर न करने और इसराइली सिक्योरिटी राय के हवाले से इतला दी है कि अगर इसराइल की सियासी क्यादत की हदायत नहीं तो फौज तवील अरसे तक लुबनान में रहने के लिए तैयार है। इसराइल ने मजीद कहा कि फौजी लुबनान में तमाम मुमकिन मंजरनामों के लिए तैयार हैं। हालांकि वाशिंगटन तहरान जुम्मे को स्विट्जरलैंड में इस माहदे पर दस्तखत के करीब पहुंच रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जंगबंदी के बावजूद जनूबी लुबनान में इसराइली हमले बदस्तूर जारी हैं। रिपोर्ट में चंद घंटों बाद सामने जब लुबनानी सदर जोस ओन ने कहा कि अमरीका और ईरान के माबहन मुफाहमत की याददाश्त में खत्ते में अस्करी कशीदगी को रोकने के वादे शामिल हैं जिनमें लुबनान भी शामिल है। मंगल के रोज़ ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराकची ने कहा कि लुबनान जंग का खात्मा वाशिंगटन के साथ माहदे का एक लाजमी जुज है, इसमें इसराइली फौज का लुबनानी इलाके से इनखला भी शामिल होगा। हाल ही सरकारी दादोशुमार के मुताबिक इसराइल 2 मार्च से लुबनान पर जारहियत कर रहा है जिसके नतीजे में हजारों अफराद हलाक और जख्मी हुए और 1 मिलियन से ज्यादा लोग बेघर हुए।
0: अमरीका ने जनेवा में दस्तखत की सरकारी तकरीब से कबल इसराइल को पाकिस्तान की सालसी में होने वाली मुफाहमत की याददाश्त को देखने से रोक दिया है। इस पेशरफ से ईरान अमन माहदे और लुबनान में तनाज़े पर पहले से ही इख्तलाफात का शिकार इत्तेहादियों के दरमियान ताल्लुकात मजीद कशीदा हो गए हैं। इसराइली चैनल I24 न्यूज़ के सफारती नुमाइंदे गाय एजरेल ने इस खबर की तस्दीक कर दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में एरजेलन ने लिखा है कि अब मैं इस बात की तस्दीक कर सकता हूं कि इसराइल ने ईरान से मुफाहमत की याददाश्त तक रसाई की दरख्वास्त की थी, लेकिन इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया है।
1: न सब कुछ इसराइल के दायम बाजों के कौम सलामती के वजीर एतमार बिन गवीर को वीजा सकर में दुश्वारी की बिना पर अमरीका का अपना दौरा मनसूख करना पड़ा। बिन गवीर ने इसराइली ताजर याकूब अल हरारत की बेटी की शादी में शिरकत के लिए 21 फरखान मिर्जे के लिए और सफारती मुलाकात की दरख्वास्त दी थी। दाएं दाएं बाजू के इसराइल वजीर ने अमरीका का दौरा मनसूख कर दिया जब उन्हें अमरीकी सफारखाने के वीजे के अमल के लिए फिंगरप्रिंट्स देने की दावत दी गई। यह हकीकत के बिन गवीर के अमरीका के दौरे को एक इसराइली ताजर मुनजम करेगा, इसने भी तनाज को जन्म दिया है। इसराइल मुजरा के निजी माली मामलों से कायम की सफर की इजाजत इस शर्त पर दी जा सकती है कि वह मुफादात के तसादम का बायस न बने, अवामी अहदे के गलत इस्तेमाल का मुजर न बने और अखलाकी उसूलों की खिलाफ वर्जी न करें। ये खबरें सदाए तुर्की की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
0: अमरीकी इंतजामिया ने कानूनी ब्रीफिंग में इंकशाफ किया है कि एलोन मस्क का मसनू जहानत का आला ग्रोक ईरान के खिलाफ हमलों में इस्तेमाल हुआ है। 15 जून की ब्रीफिंग में इस अरबपति की कंपनी XAI के एक बड़े डेटा सेंटर में इस्तेमाल होने वाले गैस टर्बाइंस का दिफा किया गया जिनके खिलाफ माहौलियाती मुकदमा दायर है। AFP का कहना है कि महकमा उमूर इंसाफ का इस्तदलाल था कि यह मुकदमा मसनू जहानत जो कि शुबा जंग की अस्करी कार्रवाइयों की जिद्दत के लिए बिजली की फराहमी बंद करने की कोशिश करके अमरीकी कौमी मुआशी और तवानाई की सलामती को खतरे में डालता है उससे ताल्लुक़ रखता है। इस दलील के सिलसिले में वफाकी इस्तगासा ने पेंटागन के AI चीफ कैमरॉन स्टैनले की हल्फिया गवाही पेश की जिनमें उन्होंने कहा कि ग्रोक पहले ही प्रोजेक्ट माविन में इस्तेमाल हो रहा है जो अमरीकी फ़ौज का AI से इंजमाम शुदा हदफी प्रोग्राम है। स्टैनले के बयान में कहा गया है कि इस प्रोजेक्ट के माविन स्मार्ट सिस्टम ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान 96 घंटों में 2000 से ज़ायद गोला बारूद को 2000 मुख्तलिफ अहदाफ पर दागने के काबिल बनाया। स्टैनले ने मस्क की टेक्नोलॉजी और ग्रोक गव मॉडल के जरिए मुमकिन बनाई गई नुमाया बढ़ती हुई ऑपरेशनल

0: अगर एक कैदी मर भी जाए तो उसके बदन को उस वक्त तक तहवील में रखा जाता है जब तक सजा पूरी नहीं हो जाती। इसराइल के कैदियों पर तशद्दुद की एक किस्म सुस्त रफ्तार मौत है। खालिद अल सैफी नामी एक फलस्तीनी को जब रिहा किया गया तो इसे सेहत के इंतहाई पेचीदा मसाइल का सामना था। 67 साल सैफी जेल से निकलने से महज एक हफ्ते बाद जेल में उस पर किए गए तशद्दुद के बायस पैदा होने वाले जिस्मानी मसाइल की ताप न लाते हुए शहीद हो गया। सामिन, इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। अपने मेज़बान मिसबा शाहीन को इजाज़त दीजिए। बाखबर रहिए, बासमीर रहिए।
1: फौलादी अज़्म और मुसम्म इरादे का नाम गज़ा।